0: अध्यात्म कालांतरे संवर्तुम् अबुद्धे
1: अन्नमयं धर्मानुसतिमयं करोमि से।